0: 103.3 MHz।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने स्वरूप दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि। फोन नम्बर 98 160 91 013।

0: Lobo Junior Mero App
1: Unseeker Time Check
2: अहिले 8 बज्यो
3: Yes, Time Check का प्रायोजक
4: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSCI Education Foundation दमक

चापी चपन मलाई चप्पै अहै चपन मलाई चप्पै अहै चपन मलाई चप्पै कसैको थाली माया पखाली छपन मलाई छप्पै अहै छपन मलाई छप्प

0: Global Junior Mero App.
1: Insecure time check.
2: अहिले 12 बज्यो.
3: Yes, time check का प्रायोजक
4: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSEI Education Foundation दमक.

0: ग्लोबल जूनियर मेरो एप
1: हिमशिखर टाइम चेक
2: अहिले 2 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक
1: सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण केन्द्र CSCI एजुकेशन फाउंडेशन

0: 103.3 MHz।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कुटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने स्वरूप दमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि, फोन नम्बर 98161913।
2: मामा सँग हाई कार्य माइग्रेट

यो बच्चा खबर तपाईँ हाम्रो रेडियो यही हो हिमसिखर हिमसिखर हिमसिखर रेडियो हिमसिखर 103.2 मेगाहर्ट्ज।

0: हिमसिखर रेडियो हिमसिखर 103.2 मेगाहर्ट्ज
1: श्रोता अब तपाईँ एक घण्टा अवधिभर पुराना पुराना कालजयी हिन्दी गीत सङ्गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: सिखा, एक से तीन थुप्लो तीन मेरा हर्ज।
1: श्रोता अब तपाईँ एक घन्टा अवधि भर पुराना पुराना कालजयी हिन्दी गीत संगीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ।

हेलो हिंदुस्तान का मेरा तू। हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो हिमशिखर 103.3 मेगाहर्ज।
1: तुमको पता है इस कॉलेज के एक लड़के और लड़की में you know what I mean?
2: My goodness, कौन है वो? क्या नाम है उनका?
1: तुमको बता देता हूँ लेकिन देखो यानी समझी।
2: ओफो, हद है, कान में बोलो।

0: अब ये लड़की कोई मान नहीं सकता है।
1: कब क्या हो जाता है कोई जान नहीं सकता है।

0: कल जब लड़का कॉलेज आया लड़की भी साथ आई।
1: अच्छा?
0: मैंने पूछा ये सब क्या है,
1: क्या बोली हो?
2: बोलेंगे क्या,
0: लड़का काफी झेल गया और लड़की भी चर पाई।
3: जब से दोनों एक हुए हैं ये होता है अक्सर, लड़की का जब नाम पुकारा लड़का बोला यस सर।

यक्षकुलजलगतविलगत रात्रिं चर दिवाचर सर्वान्निर्विषं कुरु स्वाहा। राजभय चोरभय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्र परविद्याश्छेदय छेदय स्वमन्त्र स्वयन्त्र स्वतन्त्र स्वविद्याः प्रगटय प्रगटय।